पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुख कामना होई तू करता करना मैं नाही जा हूं करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात मह ज्योत ज्योत मह जाता अकल कला भरपूर रहया

नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महा

हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपतासा है मिल संगत गुण प्रगास।

अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी।

के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तौ पावे सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया।

जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मैल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जजु करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जक्षण उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बद कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घाट घाट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब अकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार नृपकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको करपाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव।

तब कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा।

अर असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण खाता जे अस तुझ तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै।

तब होई दुष्ट शाह श्वय सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर ना

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो।

मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहौ, जिस दियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वासु कीते, काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया।

पौड़ी। तिथै तू समर्थ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे, पौ जल बिखम अस गाहो गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ

सत्संग जी, बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वासी भगवती वासी दसवीं प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई प्याए, फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमर श्री हर राय, श्री हर कृष्ण चाहे थे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कारण उन्हें दयावता आए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदार दा तैंतर के खालसा से। बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुख से हटिया जपिया जपिया जिन्हें नाम छपया वन छपया दे चलाई के वाही दे के निर किया तेना प्यार सत्यार नहीं कमाई देते अंदर के। बोलो जी वाहेगुरु। जन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म हे सीह दिते, बंद बंद कटवाए कोपरिया लुआईया चटरिया के चढ़े आ रहे न चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां की धर्म नहीं आ रहा सी किसी के कैसा सरसा संघ निभाया ते ना नहीं कमाई देते अंदर के। बोलो जी वाहेगुरु। भैया तक तांसभा गुरुद्वारा दाते अंदर के। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चेता वह चित आवन का सदका तर सुख हो वह जहां जहां गुरु खालसा साहब तर चरिया देख देख की फतेह बृद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमृतसर साहब के दर्शन सुना क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म क्या जयकार। बोलो जी वाहेगुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत पत के रखे आप वाहेगुरु। गुरु की विवाज पंथ सदा सहायत जी हो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हें तो आप जो पंथ में छोड़िया गया सरदार सेवा समाज का दान अपने खालसा जी ने बख्शो ये नोटियां की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जी हो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे तो आने रास हे गरीब नवाज जी आपके चरण कामना जरदास जी से आपने बख्शिश की है आपके चरणा पित्र गुरबाणी सुखमनी साहब के संपूर्ण पाठ में दिता है इस वे संध्या समा जान के आपके चरणा सोधदार रह रहा साहब के पाठ किसी ने कृपा करो भूमिया भुला चुकों की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सतखंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगत देवत्या विसान की कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध मित्र बाणी टाणी बल बुद्धि बख्शिश करो। गरीब नवाज इस खुशी आप दिन बख्शियां दातों में पितर कड़ाप शाह देगा तैयार करें हाजत आहार आप जी भोग लाओ शेर प्रसाद सात संगत रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जपे बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। भीम राज कृपा करो आप जी बख्शियां दातों जो नगराए टुट सवारियां प्रवान करनी ये दतार आप दे चरणा सेवा करते सारे तैयारी सिंघा सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चज करा बख्शो अरे सदा ही इसे तरह अपने चरणा सेवा दी भावना बख्शी पालता करो। गुरु गरीब नवाज उतार दियो अमृत वेले तो लैके दरते आई सौ संगतान जहाज दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संगतान का दर ते फुट पेटा प्रवान शुभकामना पूरी करो जी। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह बख्श करो उतार दियो आप दे दर कर सेवाधार रजत रोड़ा प्रवान उतार पिता जी काका रजत रोड़ा के जन्मदिन की खुशी उतार पिता जी हो आप दे चरण धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं सारे प्रवाज तंत्र सुरक्षा की चढ़ कला वास्ते तार पिता जी हो बेनती करते हैं तार पिता जी और बच्चों ने पातशाह जी उच्ची विद्या की दाज वास्ते बख्शिश लैन वास्ते आप जी शीर लैन वास्ते तार पिता जी हो बच्चे उच्ची विद्या वास्ते बेनतियां करते तार जी परिवार वालों बेअंक बेअंत माया आप चरना पेटा की प्रवान कर बख्शिश करते हैं काका अरज अरोड़ा तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो माता पिता धर्म देश को आग्ञा कार बख्शा दतार बच्चे ने गुरु सिखी दाज बख्शी करके होर उच्ची विजय दाज बख्शो सारे परिवार में तंदुरुस्ती सुरक्षा की चाटी कलाकार गिरी विवाद कृपा करो सदा मेरे प्रयास परिवार की सिद्ध रखो आज गिरी विवाद सदा अरोड़ा परिवार दिन शुभकामना वास्तव मत पूरिया करके अपने चरणों की सेवा की सदा दाज बख्शन की वालता करो मेरे को सत्य पातशाह जी हो बच्चे सारे तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो गुरु सिखी नाम दर्जा बच्चे उच्ची विजय दाज बख्शो चाटी बख्शो तरक्की आपका जिंदगी बख्श कार्य की बात करो दरदार गरीब नवाज जी मेन बोलिया सबके जमला किसी आगे की अरदास गरीब नवाज रोड़ा परिवार जी सदा शुभकामना वास्तव पूरी करो और चरणा की सेवा की दाज बख्श की बात करो जी दरदार जी बख्श करो काका महान सिंह गिल दे जन्मदिन की खुशी चाहे परिवार वालों मेहनत मैं पेटा परिवार बख्शी कर रहे हैं काका महान सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो तुम कि नाम दाल दरदार उची विद्या दास की पालना करो जी गिरी पिता जी मेहनत करो सच्चे पातशाह जी हो खालसा पंथ सिख कौम
ਇੱਕ ਦਸ ਵਾਗ ਪਿਆ ਦਿਵਸੀ ਕਰਕੇ ਸਤ ਦਸ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ੋ ਚਾਨਣਾ ਜੋੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਿਕਪਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੁਹਾਨ ਫਤਿਹ ਸ਼ਿਕਪਾਲ ਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ ਰਾਮ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਕਰ ਗੁਰਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਭ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਵਕਤ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਕਰਿਆਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਪ੍ਰਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ

माता की आशीष निमक नाम श्रो तुमको हर हर सदा जो जगदीश परिवार वालों हुक्म है सो सत कृपा से कृपा समुचित परिवार मेहर प्रिया हाथ रखा।

मन मेरी गहो, हर नाम का ओला तुझे न लाग गए। ताता चोला अगता की टेक तो, संता की ओट तो, सच्चा सृजना मालक जी, जिहड़े फिर तेरे नाल जुड़ गए ने, जिन्हां दी ऐसी अवस्था बन गई। पेकत सुनत सदा है संगी, मैं मोरख जानिया दूरी रे। जह जह पेको तै हजूर दूर, कतो ना जाए हे पाई। जे मन दे अंदर उस मालक प्रभु सदा अंग समझदा है, फिर तेरे तो दूर नहीं है। पेकत सुनत सदा है संगी, मैं मोरख जानिया दूरी रे। इनिक सेवा प्रवान होइया भुला चुका दिखी मक नहीं आओगले प्रोग्राम सरवण करिए गुरु गुरदेव जी। सत्कार योग्ञानी नवनीत सिंह जी, उन्हां पासो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गुरबाणी की विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दस वालों फुर प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

लिखा छूड़ अलिख छूट है। हम निर्गुण लेहु उबारी, साधु बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछे परयो, राख लेहु एह बारी।

गुरमुख नाम त्याय तुझै समाया। जुग छत्ती गुबार तिस ही पाया, जला बिंब असराल

मैं वाहिगुरु की सिफत कर करके उन्हें चक्रवर्ती कही जावा बादशाह कही जावा फिर ते अंत पै जाएगा। पर गुरु साहब कहिंदे वेखो किड्डा कमाल का बचन, करतार जी कहिंदे जे को बंदा सारी उम्र ला के ही कही जाए ना भी परमात्मा बड़ा वड्डा राजा है चक्रवर्ती बादशाह है ते दाता जी कहिंदे उहदा ये कहना इउं होएगा जिवें कोई चक्रवर्ती राजे नूं मियां कह दे। मियां इक छोटी जी सत्कारत पदवी है, मान लो कोई पिंड का सियाणा बंदा होवे उहनूं कह दईए मियां जी, ते इक चक्रवर्ती राजा होवे जे कोई चक्रवर्ती राजे नूं मियां कहे निक्की जी पदवी दे ते राजा गुस्से होएगा कि प्रसन्न होएगा? गुस्से होएगा भी किथे चक्रवर्ती राजा जिदे कंट्रोल विच लखां मियां आ सकदे ने। गुरु साहब कहिंदे उहनूं इन्ने ही वारी कहण तों बावजूद भी तू समझी मैं इन्ना कु कह सकिया जिन्ना किसे सुल्तान नूं मियां कहना। तू सुल्तान कहां हो मियां तेरी कवन वडाई। दाता जी तू सुल्तान है ते मैं सुल्तान सुल्तान करी जावां, इहदा मतलब है इन्ना कु कह सकां जिवें किसे नूं मियां क्या होवे। तेरी कवन वडाई जो तू देहे सो कहां स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई। मेरे अंदर समर्था ही नहीं अकथ नूं मैं कह सकां जिन्ना कु कथ रहा ये तू मैनू बुझ दित्ती है समझ दित्ती है ते मैं तेनू कथ रहा नहीं ते मेरी समर्था कथन दी नहीं। मेरी जुबान इन्नी छोटी है। सूफी फकीर होया एक हजरत बाहू उन्हें बड़ी कमाल दी रुबाई लिखी है। वो कहिंदा एह तन मेरा चश्मा होवे अखी वेख ना रज्जा हूं। कहिंदे दो चश्मे नहीं, दो चश्म दा अर्थ फारसी विच हुंदा है अखां। कहिंदे एह तन मेरा चश्मा होवे ये सारे शरीर के जिन्ने रोम ने 3.5 करोड़ रोम ने। कहिंदे हे वाहिगुरु तू कल्ले कल्ले रोम विच अखां ला दे, कल्ले कल्ले शेख विच देखण दी शक्ति भर दे ते मैं सारे शरीर राही वेखां पर फिर भी यह तन मेरा चश्मा होवे अखी वेख ना रजा हूं। मैं तामी तेनु वेख वेख रज नहीं सकता, भाव मेरी अखां थक जाणगियां छोटियां पै जाणगियां पर मैं तेनू माण नहीं सकता पूर्ण तौर ते भी तेनू आखदा कि हजारां करोड़ां अखां नाल मैं वेख लिया ते तू हुण वेख के मैं रज गया वा तेरा अंत पा लिया। दतार जी कहिंदे नहीं एवें नहीं हो सकता। हजरत बाहू जी कहिंदे मैं थक सकदा अक सकदा पर परमात्मा तेरा अंत नहीं पाया जा सकता, अंत नहीं पै सकता पर तेरे अंदर अकीस इको होया जांदा। जो जपजी साहब विच गुरु साहब ने बिल्कुल हजरत बाहू वर्गी गल की ना एक दू जीबो लख होहे लख होवे लख वीस एत राह पत पवड़िया चढ़िया होए 21। ये पौड़िया ने सिफत करनी सलौता करनी उन्हू वड्डियां कहना ये पौड़िया बनानिया ने। केड़िया पौड़िया भी उहदे तक जाना, ये नहीं भी वह पौड़िया ऐसा बनाईया भी वह साढ़े तक आए तो उन्होंने असी आप वड्डे बन जाए। गुरु साहब कहिंदे वह पौड़िया बना जेड़िया तेनू उहदे दर तक लै जान, ना कि तू कहे भी मैं वह राह बनाना वह मेरे घर तक आ जाए। हुण जे को कहे भी समुंदर जेड़ा है वह मेरे नाले विच आ जाए तो नाले का की हाल होएगा? समुंदर तो समुंदर है, नाला समुंदर विच जा सकता है समुंदर नाले विच नहीं आ सकता। इस करके दतार जी कहिंदे एक दू जीव भाव लख होहे लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखी है किने तेरा अंत ना पाया। ये जिबियान एक नहीं भी हो जाए लखा हो जाए ते एक एक तो लखा वारी आख्या जाए एत नाम इस तरह नाम आराध्या जाए। दतार पिता जी कहिंदे जगदीश दा वाहिगुरु दा नाम चढ़े पढ़िया जाए एत राह पत पवड़िया चढ़िया हुए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। दाता जी कहिंदे उहदा अंत पाणा इउं है जिवें आकाश दे पंछी नूं वेख के एक कीड़ा हौसला कर ले भी मैं भी आकाश विच उड सकदा। खंभ तां निकल आउंदे ना कीड़ियां दे भी, पर दाता जी कहिंदे कीड़े ते खंभ निकलना चिंता दी गल है खुशी दी गल नहीं, क्योंकि जदों कीट दा खंभ निकलदा उहदी मौत उदों ही तय हो जांदी है। पंछी दे खंभ उहनू बचांदे ने जीवन दिंदे ने, कीट दे खंभ उहदी मौत दा कारण बणदे ने। भाव है कि जदों इंसान उहदे विच समा जाण दे लई आपा मिटा देण दे लई उहनू आराधदा है ते उहदा जीवन बनिया रहिंदा है समा जांदा है। जे किते भावना होए भी मेरे अंदर फंग निकल गए ने खंभ निकल गए ने मैं उहनू जानना है फिर समझो वह मौत है, वह जान नहीं सकता पच पच के हार हार के मर जाएगा।

तुम रह सूतर तुम ते हो इस वाग्यकारी तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरां श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस टिठे सब तुह जाए तेग बहादुर सिमरै करन त्यावे धाए सब थाई हुए स दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी सब थाई हुए सहाय दसम पातशाहिया की जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान रखे बोलो जी पंजा प्यारियां चो हम सब जादे चाली मुक्तियां अठियां जपियां तपियां जरनाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाहे देख केंद्रित किया तना प्यारियां सत्यारियां की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लोहाइयां चरकड़ियां ते चढ़े आरियां नूं चराए गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारे सिक्खी के सत्संग सत्संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी किरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चतावे चतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहब तां दा रशिया रियाए देखते फतेह बिरत की पाए पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चुंकियां झंडे वंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पत कारा का आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शनदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो फिर माण्यो के मान नकाण्यो के तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी के चरणां अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि के दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुरु शब्द दियां विचारां उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन हुए महाराज जी समुचे सेवा निभाउंदिआं बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचारां करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या होईआं बेअंत फुल्लां बख्श देणियां

जय कर कीर्ति आखी है करते का होए बिचारो तित कर गावो सोहेला सिवर सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाना कीमत ना पवै तिस दाते कमण समार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देह सजन असी सड़िया।

कौ नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ न जाने मेरा। अरदास इक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह वार, श्री भगवती जी की पातशाह, श्री भगवती जी साहे दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगत गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया करना दावेता है। सब थाए होना सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी, सब थाए होना सहाय दसा पातशाह की जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलना जी। धन धन श्री गुरु नानक देव गोबिंद रूप सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी का कोटान कोट शुकर, लख लख धनवाद। अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी ने अपने पवित्र पावन खुले दर्शन दीदारे बख्श के समूह संगतों नूं निहाल किया है। इस वेले आप जी के हजूर कीर्तन सोहले साहब जी के पाठ हुए, सुखासन की सेवा हुई, बाणी का पाठ करदे सुखासन की सेवा करदे अनेक ही प्रकार दियां भुलां गलतियां हो गईयां होणगियां, अंजान बच्चे समझ के बख्श लो। अगो वास्ते शुद्ध ते स्पष्ट बाणी पढ़न की शुद्ध सेवा करन की मत बख्शनी। आप जिया के भाणे अंदर चार पैर दिन सुख नाल वतीत हो, रात्रि आई भाणे अंदर सुख नाल वतीत करा, अमृत वेले का जागना बख्शना। इस वेले आप जी के पावन सुखासन साहब तैयार हैं, आप जी अपने आसन से विश्राम करो। समूह संगतों नूं छुट्टियां बख्शो, अखरवाद घाट पड़िया पुचक माफ करना, सर्व दे कार्ज रास करने, सही संत प्यारे मिलने, जिना मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक, उरधार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओ अपरस सगल निसतार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, परत्रय रूप न पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, कारण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की बाशना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दुख ते रह, तो नानक कोट मधे को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए नेह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बच है, केवल भगत कीर्तन संग रच है, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै, वेद पुराण सिमरत पूजै मूल, सुख मैं जानै असथूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपै को नाम, ज्यो ज्यो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोय, कर कृपांतर उर तारै पास प्रेत मुगध, पाथर को तारै सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान, आपो ने दास कौ आप कृपा करै, तिस दास कौ सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बियोग, तैसा सुवारण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो व्रताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राख है तैसा तिन नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभ भावै आपे करण करावण जोग, प्रभ भावै सोई फुन होग, पसरेओ आप होए अनेक तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगाश, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहि निहाल, श्लोक पुस्तक करे अनेक जन अंत न पार वार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन भ्रमै उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तहर है, कई कोट काब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्या वह, नानक करते का अंत ना पाव है, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिर, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश प्रमाहे, जित जित लावो जित जित लावो, तेत तेत लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रास भोगी,
कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश।

पूरन होई सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ थारी नानक निबही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहु।

निधान। सर्ब इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर ना होवै आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिस है प्राप्त होए। खेम सांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास।

बखानी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन बिश्राम। कोट अपराध साध संग मिटाए,

गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साज करे तन खेहि, गावै को जी लै फिर देहि, गावै को जपै दिसै दूर, गावै को वेखै हाजरा हदूर, कथ ना कथी न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट गोट, दे दा दे लै दे थक पाहे, जुगा जुगंतर काही काहे, हुक्मे हुक्म चलाए राहु, नानक विकसै वे प्रवाहु, साचा साहिब साच नाए, भाख्या पहु अपारु, आख है मंग है देह दे दात करे दातार, फेर की अगै रखी जित दिसै दरबार, मुहाओ के बोलन बोलिए जिस सुन थरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानकी वै जानिए सब आपे सचियार, थापिया ना जाए कीता ना हुए, आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निदान, गाविए सुनिए मन रखिए पाहु, दुख पर हर सुख कर लै जाए, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई, गुरी सर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई, जे हो जाना आखा नाही कहना कथ न जाई, गुरा एक देह बजाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाए करी, जेती सिर ठोपाई विखा विण कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, जे जुग चारे यार जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए, चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे, ते हा कोई न सुजई जे तिस गुण कोए करे, सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश, सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहे न सकै थाल, नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का ना, सुनै ईश्वर वर्मा इंद सुनै मुखसाला हनुमंद, सुनै जोग जुग तन भेद सुनै शास्त्र सिमृत वेद, नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश, सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठ सठ पाए स्नान, सुनै पढ़ पढ़ पाव है मान, सुनै लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश, सुनै सरा गुणा के गाह सुनै सिख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावै राहु सुनै हाथ वै सगाहु, नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही।

न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमान मनसोर जोर न सुरति ज्ञान विचार जोर न जुगति छुट्टे संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती तिथी वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवार नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम किते पवन पाणी वैसंतर किते कान महेश किते बरमे काढ़त।

इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्धनाथ केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केती आखाणी केती आबाणी केते पात नरेंद केती आसुरती सेव केते नानक अंत नायंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तितै नाद विनोद कूड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया न जाहि जी को कह पिछे पछताई तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाय ना उहे मरे न ठग गए जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोर करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहार तिथै खंड मंडल वर भंड जिकु कथै तंत नयंत तिथै लो लो आकार जिव जी हुकम तिवै तिवकार विखै विकसै कर विचार नानक कथना करडा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताओ भांडा पाओ अमृत ढाल घड़ी है शब्द

हैं, झांझे हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलाह हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अभूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिरेक हैं, पुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो

परभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता भिखी अपरमी अभोगी।

नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध करता अदो उर्ध अर्धं अगंग उभहरता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदी अपेदी अनामंग कामं समस्तु पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी चंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयाचंद अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तुं निरनाथे नमस्तुं प्रमाते नमस्तुं गंजे नमस्तुं पंजे नमस्तुं काले नमस्तुं पाले नमस्तुं।

अखिजे अपि जे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छन्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगी अचल भोगी अचल राजी अटल साजी अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल चंतु प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जौन पुरख पार सर्व मंत्र मान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर तत्र विराज ही अवतूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेखाद पुरख उदार मूर्त जौ नाद अशेख देश और न पेश जाकर रूप रेख नराग जतर तत्र दिशा विशा

हृदय मानता ही। एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखिल खेल अनंत को फिर एक। देव भेव न जाने ही जे वेदा और कते, रूप रंग न जात पात सो जाने के जेब। तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन, चक्र बकर फिरे चतर चक मानी फुरती। लोक चौदह के बिखे जग जापी जे जाप, आद दीवन आद मूरत प्यो सबै जे था। परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख पार, सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार। कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश, धर्म धाम सो भरम रहत भूत लख अपेश। अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम। आप रूप अमीक अनुष्ठत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत। अंगहीन अभंग नात्मिक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार। सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेक, सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेक। परम वेद प्राण जाके नेत भगत नित, कोट सिमरत प्राण शास्त्र नया वही बहु चित। मधुपार छंत्व प्रसाद गुणगन उदार, महिमा अपार आसन अपांग उपमा अनंग। अनुभव प्रकाश निश्चिन अनाश, आजान बाहु साहन साहू।

कालानुकाल अनपूत अंग आभा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रनाड्य अंडन बाड्य चाचरी चंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रयाचंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दान्य चाचरी चंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रति सै अधि सै अदृश्य कृषय भगवती चंद प्रसाद कथते के आ चिज देसै के आ भिज पेसै के आ गंज कर मैं के आ भंज पर मैं के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवतूत बरने के विभूत करने के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुझा है के आशोख बरने के सर्वा अपरने के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुपौ अनुप है के आदिव है के आपो अपेव है के चित्रंग वहीन के कह अधीन के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बेअब है के जय बुल गैब है कि अफुल गुना है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रही मैं कि कर्मंग करी मैं कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिशय के सर्वत्र पेशय के सर्वत्र कालय के सर्वत्र पालय के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान्य है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलिम है के परमंग फहीम है के अकल अलम है के साहिब कलाम है के हुस्न अल वजू है तमाम अल रुजू है हमेशा सलाम है सलीखत मुदाम है गनी मुल शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीन उल जमान है तमीजुल तमाम है रजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय की यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तु पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंगाध रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिपादे अगंजे अगाते सुभंग सर्व भागे सु सर्व अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरक प्रनाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद अपांग है अनांग है अपेक है अलेक है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेक है अटाह है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है आजाद है चरपट चंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं
सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद। नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं वेपुते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद। कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमें सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहांद है के राजक रहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल की राज है गरीबुल निवाज है हरिफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरतुन परनाश है बहस्तुल निवास है के सर्बल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है अधीशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अभंग है मदपार चंत्व प्रसाद। मुनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड वर्णर अमंड वन पवनास मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अंशिज अंगु आसन भंग उपमा पार गति मित उदार जल थल अमंड दिशविस अपंड जल थल महंत दिशविस बेअंत अनपवनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओंकाराद कथनीय नाथ खलखंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चितचरण नाम अनछिज गात अचिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनडट अपार अडीठ धर्म अत टीठ कर्म अनब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत्व प्रसाद। करुणालय है हर काल्य है खलखंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व भारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से खल खंड से है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा तप है अकृताकृत है अमृतामृत है नर नायक है अमृतामृत है करुणा कृत है अकृताकृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृतामृत है जब्बा कृत है अमृतामृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पवभंजन है अर्गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पूजन प्रयाच

बीजे, नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे, नमो राज संताम संसात रूपे, नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे, नमो

0: सो करे जित सिर जाए सो।
1: परम सन्मान जो गुरु प्यारे खालसा साध संगत जीओ, रबी बाणी श्री आसा दीवार दे शब्दां छकियां समेत आपकियां ने कीर्तन सरवण कीते हन। हुण समा हो रहा अज दे मुख वाक दे विचार दा। सत्कारयोग परमजीत सिंह जी आप जी अज दे मुख वाक दी कथा सरवण कराउणगे जी। प्यार सहित सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

0: सत्संगति।
1: बोलो जी।
0: वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बास को दिपाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लही आए फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय से सब दुख जाए ते बहादुर सिमरिया कारण उन्होंने आवे आए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठदाता तैन करके खालस से बोलो जी वाहे गुरु। ग्रीवनवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटिया जपिया तपिया जिन्हें नाम च प्यार बन चख्या देख चलाई देख वाही देख डिट किया तना प्यार सत्यार की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म सीह दिते बंद बंद कटवाए कोपरिया लुवाइया चशनिया चढ़े आर नचराए गए गुरुद्वारे सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतिया धर्म ने हारिया से किसी तरीके सत्संग निभाया तिना की कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु। गुरुद्वार हों से अंदर के बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम चिता है चित आमर का सदका सर्व सुख हो है जहां जहां गुरु खालसा साहब तहां चरियाए देख देख की फतेह ब्रिद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलवाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब के दर्शन इशना क्योंकि चंडे बूंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा का मन नीवा मत उच मत पत के राखे आप वाहेगुरु। गुरु की विनवाज पंथ सदा सहाज तार दिया गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरु धाम जिन्हों को आपके पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की दात सेवा संभाल दिता अपने खालसा जी ने बख्शो हे नोटिया जी ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु तार दियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास। हे गिरनवास जी आपके चरण कामना अरदास की जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पा रहे संगतों दर्शन दर दे के निहत दता दियो बेअंत बाणियों के पास अज में रागी सिंह ने आपके चरण जासा की वाद कीर्तन किए ने विद्वान भीर ने अज के हुक्मनामे की कथा तैयार की कृपा करो होइयां भुलां चुकां दी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी स्रोत के सच के अनुप्राण करो बाणी का भाव सारिया संगतां दे हिरदे निशानी की वादा करो जी अगो तो शुद्ध पितर बाणी विचार ने बरबुद्धि बख्शिश करो भी महाराज इस खुशी में आप जी दख्शिया दातों में पितर गुलाब शाह जी देगा तैयार करके हाल दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सा संगत की रसना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश पर दे रखा बख्शिश करो जी जीवन वाज कृपा करो आप जी बख्शिया दाता जो नगर चुट सवारियां प्रमाणित करनी दतार आपके चरणों सेवा करनी सारे ताजी संघा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकला बख्शो सदा आइए सत्र अपने चरणों सेवा की भावना बख्शो की पालता करो जीवन वाज जी कृपा करो अमृत वेले तो लैके दाती आई सब संगतान जी आदि दर प्रमाण करो घड़िया ने खिलाओ संगतान दाते तिर फुल पेटा प्रमाण शुभकामना पूर्ण करो जी धन धन गुरु ग्रंथ साहब दतार पिता जी आपके चरण का अरदास मितारियां बख्शी से रुद्ध बख्शे ने ताजियाज दर के सेवादार बीबी जिंदर कौर अपने बच्चों दिया जाबा वास्ते नौकरियों वास्ते बेनती करते हैं सरकार पिता जी $100 लैके आप चाहे हाजरी दार प्रवान करो बख्शिश करते हैं सिर्फ हाजरी प्रवान करो पेटा प्रवान करो दार मेहर करते हैं सरकार जी बीबी जिंदर कौर के बच्चों सोनिया जाबा दार बख्शिश करने की बात करो बच्चों जाबा बख्शिश करो नौकरियों की दाल बख्शिश करो जी गरीब नवाज परिवार में सुख शांति जारी करा करो दाते इलाज पत्र रखो कमाइया सफल करो जी आधार कृपा करो आधार कर सेवादार भाई मखण सिंह सारे परिवार की तंत्र सुख शांति चाहती कला वास्ते बेनती करते हैं बेअंत माया लगे $101 लैके हाजरी अनुसार प्रवान करो बख्श करते हैं गरीब नवाज जी भाई मखण सिंह के सारे परिवार में तंदुरुस्ती सुख शांति चाहती कला करो गरीब नवाज परिवार में एकता भाग प्याज बख्शी करके सस्त दाद बख्शो कमाइया सबर करो दाते इलाज पत्र रखो जी गरीब नवाज बख्शी करो दता खास संबंध सिख कौम एकता दुआग पे आज बख्शी करके सत रोज दाल बख्शो चैना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार श्रद्धा हर मैदान दीवान फतेह बख्श करने वादा करो जी गरीब नवाज कृपा करो दूर दुराधे घर बैठिया लाइव कट्ठा की श्रवण कर दे सारे संगतों की हाजिरी प्रवान करो घड़िया लेके लाओ दतार आपने कृपा की संगतों को दो बख्शे संगत आपके चैनल धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु कर लू ਗੁਰਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਰ ਸਕਦਾ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਚਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਕਰ ਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਕਾਰਜ ਵੱਧ ਬਖਸ਼ਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਆਓ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪੁਨਾ ਚੁਕਾਈ ਬਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਬਿਹਤਰ ਗੁਮਨਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਉਤਾਰ ਜੀਓ ਲੜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਛੋਤੇ ਪਿੱਤ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਕੇ ਬਾਦ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੰਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾਓ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ

जग अमर अटल अतुल ठाकुर भगत ते हर पाया, हर भाणा गुर पाया, गुर जावै हर प्रभ पास जियो, सतगुर करे हर पह बेनन।

अपना प्रभ सिमरहै एको नाम त्याई राम त्याई सु प्रभ तरे पवजल रहे आवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मीठा पाना सब इच्छ पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरे आ बिनवंत नानक।

तापै। प्रभ नेड़ै हर दूर ना जान हो, एको सृष्ट सुबाई, एक अंकार अवर नहीं दूजा, नानक एक समाई।

और तेरी माँ गुरु है, तेरा प्यो तेरा गुरु है। रिश्ता बनाया सी, वो प्यार किया सी, बस ए देखना है साडे बच्चे इस रात तुरंत साड़ी दिलो इच्छा होंदी है, पर ओदे लई सानू बच्चियां नू कहना पेगा, बच्चियो मां कौन होंदी है? माता मत, पिता संतोख। ए मां नहीं है, ए परम ना पाली, तेरी मां तेरा गुरु है। हरजी माता हरजी पिता, तू ओदा लाडला बन, तू ओदी असीस ले। ए असीस ते असी सारिया ने लैनी है, मत भुलेखा खा ली असी मां प्यो बन गए। असी बनना है, असी ऐसी मां गुरु दी गोदी च बह के समझ लेनी है गुरु की दे रहे ने असीस दे रूप च। ए केवल असीस है नहीं, ए समझ है, ए ज्ञान है, ए अकल है। ओ ऐसा मन तेरा हो जाए जागरूक अवेयर, किदे प्रति? अपने प्रति। तू जाग मना अपने प्रति जाग, तू देख मना अपने आप नू देख। ए असीस मिल रही है सानू, आसीस पुता माता की आसीस। की है असीस? निमक ना बिसरो तुमको हर हर, तेनू निमक से ना भुले। ए है गुरबाणी दा सिमरन, गुरबाणी सिमरन की करांदी है? ओ तेनू भुले ही ना, निमक हस्ते भी ना भुले। निमक की होंदा है? ए अख दा ब्लिंक करना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड असी तेनू करता ना भुले, जगदीश ना भुले। जगदीश ए पूरी कुदरत दा जेड़ा बना ना ले, उन्ने कुदरत ही नहीं बनाई, ओ बना के अवेसला बह नहीं गया, ओ तेरे अंदर मौजूद है हर हर। ओ हरी ओ जोत रूपी च तेरे अंदर वसदा ही पुत्रा। ए पुत्र असियां सारे गुरसिखां इको प्यार, गुरमित्ता पुत्ता भाइया, सारे गुरसिख गुरु दे पुत्र। सानू सारिया नू ए असीस मिल रही है, पर ए असीस किवें लगेगी? ओ पूरा गुरु पाशा ने इस शब्द ही संजो के दिता है। ए केवल ए दस्तार की है? गुरु दा हाथ है साडे सिर ते, गुरु ने दस्तार दे के अपना हाथ साडे सिर ते रख दिता है। गुरबाणी दा शब्द है ना पाक पाक, ना पाक की होंदा है? पाक नहीं है, मैला है। कौन मैला है? मन। ना पाक पाक, ए ना पाक मन किवें पाक होएगा? कर हदूर जदों तू उनू हाजर मनेगा, जदों तेरा मन हर वेले हाजर रहेगा, तां ना पाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा। ए जिहड़ा तेरा मन खिंडिया रहिंदा ना, स्कैटर्ड रहिंदा, हर वेले उड़दा फिरदा, पता ही नहीं की सोच रहा है, समा घट है, पर विच पंक्तियां ने की है? सदा चिर जीवो, सदा जीउंदा रह। असी सेम है, पर जीउंदे रहने लई लभना ते पेगा ना मरदा कदों आ। मरदा वा चिंता विच, क्या गुरबाणी ने ऐसे शब्द विच, चिंता छड़ दे, स्ट्रेस छड़ दे। काम कर, काम करन नु कौन मना करदा है तेनू? पर स्ट्रेस क्यों लेना है?
क्योंकि मैं कर रहा, क्योंकि मैं उस वेले अपने आप नू क्रिएटर मन लेना वा। गुरु नानक पाशा सीधा डायरेक्ट रिश्ता कराते ने साडा गुरु नाल, कहिंदे ने करता ना बनना कदी, डूअर ना बनना। करता ओही हो जे, करता भी कराण हार भी बुलाण हार भी। तू बुलावे बोलदा भी तू है, करदा भी तू है, सुनदा भी तू है, सारी एनर्जी तेरी है। एनर्जी किवें मिले? पंक्तियां नाल जरूर सुनना, समा मेरे को नहीं, मैं ना सारिया पंक्तियां नाल लवा। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, तेनु भोजन खाना पेगा, ए मन नु एनर्जी देनी पेगी, फिर चिंता कित्थों आएगी। जेड़ा मन कमजोर है वो चिंता नाल भरिया है, वो स्ट्रेस नाल भरिया है, वो टेंशन नाल भरिया है। असी ते कई बार विचार दिया, टेंशन की है, बाय वन गेट वन फ्री अजकल लगी है सेल, असी भी ले लेने जाओ, चिंता भी ले लो जाके। इंज ना करना, पुता माता की आसी, ए आसीसा दे रही है साड़ी मां सानू, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, सदा चिर जीवो। मरी ना कदी, विसरेगा ते मर जाएगा। निमक ना विसकरो तुमको हर, जिथे विसरिया उत्ते मरिया, डरिया उड़िया दौड़िया फसिया। निमक एक निमक जे विसरे स्वामी, जानू कोट दिवस लख बरिया। सो ए आसीस है, मन नू भोजन दे, मन नू सवार, ना पाक नू पाक कर, साबत हो जा। साबत मन, पूरा मन, कंप्लीट मन, हाजिर हजूर, दस्तार सिरा। दस्तार, दस्त कहंदे ने हाथ नू, गुरु दा हाथ तेरे सिर ते रवे। ए दस्तार गुरु दा हाथ है, ए दस्तार गुरु दी आशीर्वाद है, ए दस्तार गुरु दी आसीस है। उस पुत्र नू जिने एनू मां मनिया, गल ते मनन भी है, कहना और मनना। गुरु मां है सारिया दी है, पर असी मनिए, रिश्ता बनाइए, प्यार करिए। बाणी ना, बाणी तो उपर सानू कोई नहीं दस सकदा जीवन दा सही राह। सुता मेरा समा हो गया, पर हुण तुसी शब्द ध्यान नाल सुनना। केड़ा रंग तमाशा क्या मैनू माड़ना से, केड़ा अमृत क्या मैनू पीना से, ओ फुल ते मैं बैठा रवा, ए गुरबाणी ते ते ओदे विचो अमृत पींदा रवा, ते सदा खुश आनंदे। आओ नंद साहिब दी पंक्ति पढ़ के समाप्ति करिए।

0: सतगुर पाया, सहज पाया, मेरी मां मैनू आनंद मिल गया। फुला चिकन दिखे मां जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी का, भैन जी जसबीर कौर जी का। माफ़ी चाहते हाँ कि समा घट से मन करता से कि बोलते रहन, और बड़ी गंभीर डूंगी विचार गुरबाणी की कर रहे सन, सो समा अलाउ नहीं करता से कि अगे वधीए, क्योंकि प्रोग्राम इस प्रोग्राम की समाप्ति के बाद रहराज साहब का पाठ जोड़ा होना है और टाइम सिर होना चाहिए। इस करके हम अगला शब्द जो पढ़ना है बच्चों के गुरु अंश सेवक अते सिद्धक के पेरेंट्स ने पढ़ना है, इन्होंने भी यो शब्द पढ़ना है, पूता मास्ता की आसीस, जिस तरह भैन जी ने दसिया। सो नाल बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। अगवाई कर रहे हैं लगे गुरंश के फादर चेतन दीप सिंह, नाल उन्होंने मदर पिछे बैठे हैं अशमीत कौर, यू ऑल नो दैम, कमल कौर सिदक्स मॉम ऑन द फ्रंट, एंड बन्ना सेवक्स मॉम ऑन द फ्रंट, ते पिछे सुमीत सिंह सेवक्स डैड, एंड मनजीत सिंह।

दस पूर्व सदा दशहरा हो नाम हर का सदा जांचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीरथ मज्जना साच न लागे मैल

0: आप पारस परम प्याने साच साच पावे आनंद अंदिन हरख साचा दुख किलविक पर हरे सच नाम पाया गुरु दिखाया मैर नाई सच मने संगत मीत मिला पूरा नावणो गावे गावण हार शब्द सुहावणो सालाहा सच्चे सालाहा साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बेणीता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता सत संगत कर नजर मेल मिलाया कहन कहे सब कोए केवड़ आखिए हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा पूछ करे आवे दिखला दे सबद सचे गुर मेरा आखन तोतना भगत भंडारी परपुर रेहा सोई नानक साच कहे बैनंती मन मान जय सच सोई आखन तोतना भगत भंडारी परपुर रेहा सोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जय सच सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राष्ट्रीय महला पहला छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसारा हो नाम हर का सदा जांचो देह पवतरनी तरा।
1: खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत्संग जी असी सारिया ने अरदास जुड़े हाँ बच्चों की चढ़ती कल लिए अरदास मंगी है गुरु पास तो हुक्मनामा सरवण किया है उस नाल पहलों डॉक्टर गुरु नानक सिंह जी ने शब्द राही बच्चों को असीस दी सो डॉक्टर साहब का भाई साहब भाई मनमोहन सिंह जी का जिन्होंने के अरदास अगवाई की बीबी जगदीप कौर जो कि सेवक दे नानी जी हैं जिन्होंने हुक्मनामा लिया इन्होंने सारे का धन्यवाद। सत्संगत हूँ असी जो असली सैरेमनी है वह तो अपड़ गए हाँ तो बेनती करांगा कि बच्चों ते बच्चे तिने बच्चे सिदक सेवक गुरंश इत्थे गुरु महाराज की हजूरी च आ जाओ। भाई मनमोहन सिंह जी आप जी थोड़ा जहां उन्होंने गाइड करो ते इना दस्तारबंदी की जो रस्म है उन्हें लिए मैं बेनती करांगा कि उन्होंने पेरेंट्स ते ग्रैंड पेरेंट्स आन ते नाल डॉक्टर गुरु नानक सिंह जी ने भी बेनती है कि वो इस महत्वपूर्ण जो सैरेमनी है वो अपना हिस्सा पाण बच्चे बच्चों दस्तारबंदी अपने घर कमला नाल पहनाण। सो बेनती है कि पेरेंट्स भी आन

हाँ जी, पेरेंट्स पेरेंट्स दस्तार बनीश्वर कर्ण विच विच डॉक्टर साहब भी थे, डॉक्टर भाई मनमोहन सिंह जी भी अपना हिस्सा पान। खड़े हो जाओ, दैट विल बी इजियर।